उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

जाना रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

भक्त जनों, हम आज आपको कांवर की महता सुनाते हैं। एक बार भगवान परशुराम अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता रेणुका जी का शीश काट देते हैं। इस पाप से बचने के लिए वो उपाय खोजते हैं। नारद जी के कहने पर परशुराम जी भगवान शिव की उपासना करके हरिद्वार से पावन गंगा का जल कांवर द्वारा लाकर शिव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उसी चरणामृत को लेकर अपनी माता के मृत शरीर पर डाल देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रेणुका जी को जीवन दान मिल जाता है। ऐसे हैं करुणाधारी भोलेनाथ। तो आइए आनंद लीजिए इस भजन का।

पूरा तौर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

गम की सदा कौन सुने, गम की सदा कौन सुने, गम की सदा कौन सुने। आज खुशी छाई है होश नहीं।

Tuschko, अभी आपने सुने हैं फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। सुन लेगा ना कौन सी बोली सीखेगा तो कि हमार जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी ना कि हम फरलीफ बाटी हम गनवा पे फरलीफ बाटी मैंने फ्राह में तू के कर ऊपर फरलीफ बाटे नहीं नहीं नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम एक नाम आपको सुनने गुजार हैं ऑफिनाओ रेशमा है ऑफिनाओ शारदा है ऑफिनाओ और कौन कौन नाम ले चाहे जोन तो नाम हैगा तेरे चेहरे में वो जादू है तोर चेहरा में इतना जादू हैगा किशोर कुमार

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए भैया आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखल जाए तो मार वाची वहां से ऐसे नहीं बोल। कभी कभी हम लोग बहाना बनाएला मुलाकात करने के लिए, सोम्स विलो वे रेड हैबर ओमी मंतसीम

अंतिम संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो पर आज की बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम ये शाम अब समाप्त होने वाला है। सभी लाश त्राश को धन्यवाद। अब और एक आखिरी बैठ गाना आप सुनने को जा रहे हैं।

वंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय शब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करी प्रणाम सप्रेम सुबानी।

दोस्तों बैठक गाना हंगामा का प्रोग्राम धीरे धीरे अब खत्म होने को आ रहे हैं। बधाई फॉर लाइव श्रीनाथ उजाला रेडियो, हम विदाई लेते हैं इस खूबसूरत बैठक गाना के साथ।

Roo Jelle Radio के जरिए हम प्रोग्राम में ये हम आपको सुनाने को जा रहे हैं एंड सोमते नतुलक और भी कुछ बातें हम करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ प्यार मोहब्बत के गाने हम आज के प्रोग्राम में आपको सुनाने वाले हैं।

जिम गिरे सावन उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं ये शानदार सिनेमा पेश किए गए हैं। एंड अ लुक, गर्मी के मौसम है, ब्लाइव कलम, ब्लाइव ड्रिंकें एंड खनीत फन मोई वेयर वंथ ऐसन वेयर बार बार ना आवेगा आवेगा मदान बीच विश्व फॉलो दिस ऐसन मोई वेयर रहेगा द मुझे खोन खनीत मैट फॉलो तो

Dushko, अभी आपने सुने हैं फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। सुन लेगा ना कौन सी बोली सकेगा तो कि हमारे जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी ना कि हम फरलीफ बाटी हम गनवा पे फरलीफ बाटी मैं फ्राह में तू के ऊपर फरलीफ बाटे नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम एक हम आपको सुनने गुजार हैं ऑफिनाओ रेशमा है ऑफिनाओ शारदा है ऑफिनाओ और कौन कौन नाम ले मांगने आए चाहे जोन तोर नाम हैगा तेरे चेहरे में वो जादू है तोर चेहरा में इतना जादू हैगा किशोर कुमार

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखा जाए तो मार कभी कभी हम लोग बहाना बनाए ला मुलाकात करने के लिए. सोम्स विलोवे रेड हैबर ओमी मंतसीन.

कि तेरे हाथों में पहना की चूड़िया। यूआर के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन प्रकट की जा रहे हैं स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। ए जानेमन, सुनना तेरे हाथों में।

Yes, my dear, it's the rocking sensational broadcaster. उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। आपके खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं

और तेरे घर में उजाला कर दूं। मेरे दुखवीन आयशा भोसले और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज कि तेरे हाथों में पहना की चूड़िया। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं शो मार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक, और फोन का नंबर है 02040908087 पर 02040908087 पर। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार या जो भी कार्य के वास्ते आप हमें डायल कर सकते हैं। द राजंस के साज पर आइए मिलकर सुनते हैं फिरदौस राजन की आवाज में। आंखों आंखों में तुमने क्या कहा, दिल ने ये क्या सुन लिया। लीजिए पेश खिदमत है फिरदौस राजन।

सिलेक्शन आपकी खिदमत में पेश की गई है जो आप हमेशा नहीं सुनते हैं। आंखों आंखों तुमने क्या कहा, दिल ने ये किया सुन लिया, द राजन के साथ पर, और फिरदौस राजन, हाँ फिरदौस राजन की आवाज़ में आप सिलेक्शन उजाला रेडियो के जरिए सुने हैं। यू आर का भाई हम आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है, और ऐसे में मौसम प्यार का, मौसम प्यार का रहे ना रहे, क्या बात है।

मौसम प्यार का, मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और हसीनों के पुजारी किशोरदा की आवाज आप अभी सिलेक्शन सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। वंस अगेन प्रोग्राम में आशा जी की आवाज और साथ में सुरेश भटकर। टैक्सी वाले मीटर गिरा, चल मुझको सैर करा, जल्दी नहीं धीरे धीरे चला।

के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

सनम आनंद राज आनंद एंड श्वेता पंडित इन दोनों से आप सुने नाडक कमरिया सॉन्ग था डक कमरिया

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: WNUR.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा Ujana Radio आपके हर काम काज के लिए Ujana Radio सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन आप ujana.net Ujana Radio सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन Ujala Radio के ऐप के जरिए या तो DAB Plus के जरिए आप सुन सकते हैं Ujala Radio चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए Ujala Radio आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए Ujala Radio आपके साथ

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ अब आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजलें के साथ। और इस प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम है तो बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से प्रोग्राम को आप सुन सकें।

इनसे जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया और तारों ने चमकना छोड़ दिया। पंकज उदास जी की आवाज़ में इस गज़ल को आप सुने, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया में।

रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में ये हम आपको सुनाने को जा रहे हैं एंड सो मत नतुलक और भी कुछ बातें हम करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ प्यार मोहब्बत के गाने हम आज के प्रोग्राम में आपको सुनाने वाले हैं।

रिम झिम गिरे सावन उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं ये शानदार जनामा पेश किए गए हैं। एंड नॉट यू लुक गर्मी के मौसम है, ब्लाइव कलम, ब्लाइव ड्रिंकें एंड गनीत फन मोई वेयर वंस ऐसन वेयर बार बार ना आवेगा आवेगा मैं दान बीच विश्वफारो दिस ऐसन मोई वेयर हैगा दान मुझे खौन गनीत मैट फॉलो टू यू।

तुझको अभी आपने सुने हैं, फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। सुन लेगा ना कौन सी बोली सहेगा तो, कि हमार जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी, ना कि हम फरलीफ बाटी, मैं हम गनवा पे फरलीफ बाटी, मैं फ्राह में तू केर ऊपर फरलीफ बाटे, नहीं नहीं नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो, ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम एक हम आपको सुनने गुजार हैं। ऑफ यू नाउ रेशमा है, ऑफ यू नाउ शारदा है, ऑफ यू नाउ और कौन कौन नाम ले मांगने आए, चाहे जोन तो नाम हैगा, तेरे चेहरे में वो जादू है, तोर चेहरा में इतना जादू हैगा, किशोर कुमार।

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखा जाए तो कभी कभी हम लोग बहाना बनाएला मुलाकात करने के लिए सोम्स विलोबाई रेड हैबर ओमी मंतसीम

मुलाकात एक बहाना है। वाह क्या नाम है सुनो। आज फिल्म खानदान, म्यूजिक बाय खयाम एंड गाने वाली लता मंगेशकर के आवाज में आपने ये नाम को सुने हैं। वेलकम बाय उजाला मिदाग कॉफी एंड चाय एक्स्ट्रा एडिशन। आज इतवार की दिन, आज इतवार, इट इज सोंडाग। मिशन गनीत जे फन एन रस्टिग मिदाग। सबेरे तो ओखतंत होय गए, मा मिदाग दा गनीत जे ओक नेचुरली फन एन फैमिली बेंकोंस। दिस आज वादरदाग है, दिस जे गात नाय पापा टू। आप एन पिता के पास आप जाने वाले हैं। Geniet van je vader. Een fijne vaderdag. En ben je onderweg naar een zomers evenement? Nou, maak er wat moois van. Wat je ook van plan bent vandaag, wat je plannen ook zijn vandaag. Wij brengen het nieuws, stories van dichtbij en ver weg. Met warmte en nuance. En natuurlijk een vleugje gezelligheid, toch? Toe op een chai, koffie, or pani, tear kale. Want adem je abe hega. मैं हूँ लॉयड महावीर एंड आप शैलेंद्र सिंह के आवाज में सुनने गुजार हैं ये शानदार सिनेमा मैथ कंचन। तुमको मेरे दिल ने पुकारा।